सिर्फ तानू गले लग के मिले तेनू गल ना लगाया ता माता तृप्ता जी एकदम रोना निकल गया ते नाले कहन लगे दिए हुण ते बड़ा चिर हो गया नानक नू देखे तू आई है कुछ भरोसा होया मन नू कि तेरा वीर मेरा सपुत्र गुरु नानक भी आवेगा। दूसरे पासे पाईया जय राव अपनी सौरा साहब मेहता कालू जी दे पैरां ते मथा टेके मेहता जी ने प्यार दिता ते पाईया जयराम जी भी पुछदे ने पिता जी गुरु नानक साहब हाली नहीं आए असी ते इस आस ते आए हां कि इस वरी जरूर महाराज दे दर्शन होणगे। पाईया जयराम रिश्ते दे विच गुरु नानक साहब दे पाईया लगदे ने जिन्हां नूं आपां जीजा भी कहने हां पर ओ रिश्तेदारी कट और गुरु नानक साहब दे सेवक ज्यादा है। मेहता कालू जी कहन लगे जयराम तुसी आए हो मैनू भी भरोसा हो रहा है कि मेरा नानक जरूर आवेगा। कुछ समा बीते भाई मनसुख भाई भगीरथ गुरु नानक नाल प्यार करन वाले ए भी आए ता बेबे नानकी जी दे दर्शन कीते। इन्होंने हाथ जोड़ के आखे है बेबे जी गुरु नानक साहब आए ने ता बेबे नानकी जी कहन लगे हाली आए थे नहीं पर जद बसंत रुत ने आना होवे ठंडी हवा पहला चलन लग पैंदी बहार ने आना होवे कुंजां दियां डारां पहला उड्डन लग पैंदियां ने। जे गुरु नानक दे प्यारे आए ने ते गुरु नानक भी अज जरूर आवेगा। भाई अजय राव गुरु नानक साहब दी याद विच जंगल वाल तुर पए एक दरख दे थले बैठे बड़े वैराग दे विच गुरु नानक साहब दा उचारिया होया ए शब्द गान लग पए अमली अमल ना अंबड़े मच्छी नीर ना होए जो रते सह अपने तिन भावे सब कोए। ऐ पातशाह जिस तरह अमली अमल नाल प्यार करदा अमल तो बगैर जी नहीं सकदा मच्छी पानी तो बगैर नहीं जी सकदी असी भी तेरे नाल इस तरह ही प्यार करने हैं तेरे बगैर असी भी जी नहीं सकते।

इधर माता तृप्ता जी अपने सपुत्र धन गुरु नानक साहब की याद विच मंजी ते लंबे पए। एक पासे मेहता कालू जी भरा पए देखते और एक पासे भाई अजय राम जी और एक पासे रायपुर की तलवंडी का राजा राय बुलार और प्यारे उड़ीकते पए ने कि इस वरी जरूर गुरु नानक साहब की वरे गंढ गुरु नानक साहब की हजूरी में मनावांगे। सूरज डुबण वाला हो गया है। मेहता कालू जी दरवाजे वाल निगाह टिका के बैठे हैं और बेबे नानकी जी छत ते खड़े होके राह पै थकदे ने। अचानक मेहता कालू जी खुशी नाल झूम उठे और आवाज मारदे ने, तृप्ता आओ देख मेरा नानक आ गया है। कहंदे होया बुढ़ा बाबा कालू उठ के खड़े हुए और सचमुच सामने धन गुरु नानक साहब नाल सेवक मरदाना वेड़े विच दाखिल होए और आंदे आ धन गुरु नानक साहब ने इस सद लाई सत करतार अंदर जिवें लह गया दिल की गहराई विच। मेहता कालू जी खुशी नाल झूमदे होए अगे वधे धन गुरु नानक साहब अपने पिता दे कोल आए। गुरु होण दा मन विच गुमान ने अपने पिता दे पैरां ते मत्था टेकिया जिस गुरु नानक नूं दुनिया नमस्कारा कर दी है ओ धन गुरु नानक साहब अपने पिता दे पैरां ते मत्था टेकदे ने ते पिता ने बाहां तों फड़ के अपने सपुत्र गुरु नानक साहब नूं गल दे नाल लाए कंड ते हाथ फेरे है अथरू नहीं रुकदे ते कहंदे ने बेटा अज मन नूं ठंड पै गई बड़ा समा हो गया तैनू उड़ीकदे आ तैनू बड़ा मैं झिड़किया तैनू मैं एक बारी चपेड़ा भी मारी है पर बेटा बाद विच जाने है कि तू की है। अचानक ख्याल आया कहन लगे जा बेटा पहला अपनी मां नूं मिल धन गुरु नानक साहब माता तृप्ता जी दे कोल आए मंजी ते कोल बैठे ते की देखते ने माता जी दी अखां बंद ने हाथां विच चोला है आपे कदे कहंदे ने बेटा नानक ए चोला पाला है आपे फिर कह उठदे ने लिया मां मैनू चोला पवा। ए वैराग देखिया ते धन गुरु नानक साहब अपनी माता दे हाथ फड़ के कहन लगे मां अखां खोल सचमुच मैं आ गया लिया मां मैनू चोला पवा। अखां खोलिया सपुत्र भी होवे फिर धन गुरु नानक साहब वर्ग कुट के छाती ना लाया अथरू किधे रुकन कहन लगे बेटा हर साल तेरे जन्मदिन ते चोला सी के रख दी है। साहब जी कहन लगे मां लिया फिर मैनू चोला पवा। पलो पली विच ए खबर सारे शहर विच फैल गई संगतां शहर दे वासी और ओ प्यारे जिहड़े कीर्तन विच जुड़े सन दर्शन करन वास्ते उमड़ पए ते बेबे नानकी जी हाल भी छत ते खड़े सन कि पहला माता पिता मिल लैण

वंश मेरा खानदान वधे और दुनिया दे विच ए देखदे आ कि जिदे घर धी पुत्र ना होवे रिश्तेदार भी उन्हां नूं ताने ते मेहने मारदे ने।

और कहन लगे ऐ देखो तुहाडे छोटे भरा गुरु अर्जुन साहब दा घर किन्ना कीमती समान होया, काश ये सब कुछ साडे कोल हुंदा। पृथ्वी चंद हस पए और हस के उची सारी

बड़ी धूड़ उड़ रही है, कौन आ रहा है? ता सेवका ने कहा, बाबा जी गुरु के महल आ रहे ने पाव, गुरु अर्जुन साहब दे धर्म सुपत्नी आ रहे। ता बाबा बुढ़ा जी ने सहस बा वचन कीता, गुरु पिया नू किधरों भाजना पै गई। माता गंगा जी आए, लंगर छकाया, पर बाबा जी ने पुत्र वास्ते कोई अरदास ना कीती। माता गंगा जी उदास होके वापस चले गए और गुरु अर्जुन साहब नू कहा, महाराज बाबा बुढ़ा जी ने पुत्र वास्ते अरदास नहीं कीती, सगा कहा कि गुरुआं नू किधरों भाजना पै गई, गुरु के महल नू

आज आप अपनी जगह तोट के अगा हुए और पाजी के माता गंगा जी दे सिर तो प्रसादे अते लस्सी दी चाटी पकड़ ली।

जप गोविंद गोपाल लाल राम नाम स्मर तो जीवे फिर ना खाई महाकाल कोट जन्म भरम भरम

मैं तेरे रस रस गुण गाऊं, मन करके तेरी मैं शिव सला करा, मन करके तेरी भक्ति करा। एक हन गुण गाने, एक है रस रस गुण गाने। गुण गाउंदिया तो भाई कई बेरा मन गैर हाजिर भी हो सकता, पर जिन्हां ने तेरे रस रस गुण गाए हन उन्होंने तो आपे दी भी शुद्ध नहीं रही, उन्होंने तो अपना आप भी विसर गया। इसलिए ये अमोलक दात है कि मैं तेरे रस रस गुण गावां, तेरे विच गुआच जावां, तेरे गुण गाउंदिया मेरी सुरत तेरे चरण

मोरे हृदय बसो गोपाल। गोपाल भी उना दे हृदय विच वसदा है भाई जो उस दे रस रस गुण गाउंदे हन। अकाल पुरख वाहिगुरु ईश्वर दा निवास भी उना दे हृदय ते ही होया जिन्हां ने उदे गुण गाए। एक दर्शन करना है, एक दर्शना तो रस मानना है। दर्शन तो सारे ही करते हैं पर दर्शना तो रस मानना एक अमोलक दात है, एक अमोलक वस्तु है। भाई साहब भाई नंद लाल जी जो गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी दे 52 कविया विचों श्रोमणी कवि सन, आप बड़े उग्र तपी सन। पता नहीं कितने जन्मां दी आप दी तपस्या सी जिस दे सदके रसक बैरागी दुष्ट दमन दाता गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जैसा उन्हां नूं गुरु मिल गया। एक समय दा जिक्र है कि धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह भाई नंद लाल जी ते अति प्रसन्न होए ते कहन लगे नंद लाल साडा जी करदा है कुछ मंग। किडियां खुशियां होंदियां हन जदों पिता आप अपने पुत्र नूं कह रहा होवे बेटा तू बड़े चंगे कर्म कीते हन, तू बड़े चंगे कम कर रहा है ते मेरा जी करदा है तू कुछ मंगे। अज गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने कहा नंद लाल साडा जी करदा है तू कुछ मंग। तां भाई साहब जी दे नैन कटोरे भर आए, ओ मेरा दे साईं ओ बख्शिशां दे दाते इस कीट नूं कह रहे हो कुछ मंग। हां तैनू ही तो कह रहे हां तां फिर जे कृपा करन लगे हो तो फिर मेरे ते ए कृपा करो के दीते अंबरा लज्जते दीदार बख्श। ए दीदे ए जो अखां हन ए आपदा दर्शन तो कर रही हन पर इन्हां विच रस नहीं है, वो रस तेरी कृपा द्वारा प्राप्त हो सकदा है। इसलिए जे टुटे हो तो दीदे अंबरा लज्जते दीदार बख्श, इना नेत्रां विच लज्जत बख्श तेरे दर्शना तो पूरन आनंद मान सकन। सीना अंबरा मगज ने इशरार बख्श, इस सीने विच मेरे हिरदे विच तेरे सिमरन भी भुख लग पवे। क्योंकि भुख ना लगे तां कितने भी स्वादिष्ट पदार्थ सामने पए होन ओ चंगे नहीं लगदे ते जे भुख लगी होवे तां साधारण पदार्थ भी बड़ा स्वादिष्ट लग रहा होंदा। उच्चारण करो श्री। इसलिए भाई साहब कहंदे हन हे कलगीधर पातशाह जे टुटे हो तां सच्चे नाम दी तेरे सिमरन दी मेरे हिरदे विच भुख लग पवे। साचे नाम की लागे भूख उत भूखे खाए चलिए दुख। जिन्हां नूं सच्चे नाम दी भुख लग गई भाई जन्मां दे कीते होए पाप उन्हां दे मिट गए। क्योंकि सच्चे नाम दी जिथे भुख है उथे पाप ठहर ही नहीं सकदे। उच्चारण करो श्री। इसलिए भाई साहब ने ए दात मंगी दीदा अंबरा लज्जते दीदार बख्श, सीना अंबरा मगज ने इशरार बख्श, ई दिले बिरयाम मारा शोक दे। भाई साहब कहंदे हन कि मेरा दिल विषय विकारां दी अग विच पुज चुका है ते तेरी कृपा होवे तां प्रेम मिल सकदा है ना, तां प्रेमा भगती मिलदी है जे गुरु दी कृपा होवे। इसलिए इस पुज चुके होए दिल नूं प्रेम ला मैं तेरे चरणां विच जुड़िया रहा, मेरा मन तेरे चरणों विच जुड़िया रहे। ए शरीर देश होवे परदेश होवे घर होवे बाहर होवे दुख विच होवे सुख विच होवे हे वाहिगुरु मेरा मन तेरे चरणों विच जुड़िया होवे।
दीदा अंबरा लज्जते दीदार बख्श, छीना अंबरा मगज ने इशरार बख्श, ई दिले बिरयाम मारा शौक दे, दर गलूयम बंदगी दा तौक दे। तौक कहंदे हन पटे नू, ते भाई साहब नंद लाल जी कहंदे हन मैं तेरे दर दा कूकर हां, ते ओ कूकर मालक दा खवांदा है जिस कूकर दे गल विच पटा होवे। आख्या मेरे गल विच पटा पा के मैनू आप दा बना दे। ए पटा केड़ा है जो भाई साहब नंद लाल ने कहा? आख्या बंदगी दा पटा मेरे गले विच पा, श्वासां दे अंदर बार आंदियां जांदियां मैं जपदा रहा श्री वाहिगुरु। आख्या होर भी कुछ मंगना है? ता भाई साहब कहंदे ने कुछ होर भी मंगना है, क्योंकि आप तुठे हो। आपने क्या कुछ मंग मैं तदे ही तो मंग रहा। आख्या मंग भाई होर की मंगदा है? ता भाई साहब नंद लाल जी कहंदे ने हिजर मारा आर जुए वसल बख्श, तेरे मिलन दी शिक मेरे हिरदे विच वसी रहे। क्योंकि जिस हिरदे विच ईश्वर दे मिलन दा प्यार नहीं, ओ हिरदा हिरदा नहीं है, ओ ता एक शमशान भूमिका है। जिस तरह शमशान भूमिका विच मुर्दे जलदे रहिंदे हन, आख्या ओ हिरदा भी ऐसा ही तपदा रहिंदा है, जलदा रहिंदा है, जिस हिरदे विच साई दे मिलन दा प्यार नहीं है। उच्चारण करो श्री हिजर मारा आरजूए वसल बख्श, ई खजाने चश्म मारा फजल बख्श, हर सरे मुयम जुबां कुन अज करम। भाई साहब कहंदे ने हे गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह, जे प्रसन्न होए हो तो फिर जितने मेरे शरीर दे रोम हन इन्हां नूं जीभा ला दिओ। हर शरीर दे नाल 7 करोड़ रोम हुंदे हन। ते भाई नंद लाल जी कहंदे हन कि हे गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह, क्योंकि असी कलयुगी जीव हां, ते कलयुगी जीवां दी उम्र भी छोटी है, दिन रात भी छोटे हन, ते मैं चाहुंदा हां थोड़े समय विच मैं तेरा बहुता जस करां, वध तों वध तेरे गुण गावां। इसलिए मेरे हर शरीर दे रोम ते जीभा ला दे, ते फिर एनिया जीभा नाल मैं की करां। आख्या हिजर मारा आरजूए वसल बख्श, ई खजाने चश्म मारा फजल बख्श, हर सरे मुयम जुबां कुन अज करम, ता बिगोयद विश्व हकरा दम बादम। दम बादम मैं तेरे गुण गावां, ते की मंगा मैं ए मंगा तेरे कोलों के रस रस गुण गावो ठाकुर के मोरे हिरदे।

आप केस सुका रहे हैं। अमृत वेले दे दीवान दी समाप्ति होई, अपने स्थान ते आके आप केस सुका रहे हैं। ते सूरज दी पहली किरण जदों निकली ते आप दे केसां दी तार ते जदों पई ना, ते भाई साहब जीतां विचों वेख रहे सन ते विस्माद हो गए उस केसां दी तार नूं वेख के। ते आप कहंदे ने दीन दुनिया दरक मंदे, ए दीन ते दुनिया तेरी जुल्फां विच वधे होए हन, इउं मालूम हो रिहा। तेरे एक रोम तो मैं दो जहान वी वार देवां तां वी घट हन। दीन दुनिया दरक मंदे आपरी रुख सारे मां, हर दो आलम कीमते यक तार मुए यारे मां। मान में आरे मताबे गमजे मैं गाने हूं, मेरे पास केड़ी वस्तु है जो मैं तेरे तो वारा। मान में आरे

लाया प्रीतम आपने तन मन होए निहाल जां गुर देखा शमन। मेरा तन मन निहाल हो गया है, मैं सदके हो जावा तेरे एक एक केशां दे रोम तो। जिथे मेरी नजर जा टिकी है तो भाई जो अपने गुरु तो सदके जांदे हन बलिहार जांदे हन उना दा ए लोक भी सुखी होंदा है परलोक भी सुहेला होंदा है। तो भाई साहब कहंदे न हर दो आलम कीमत यक तार मुए यारे मां मान में आरे मताबे गमजे मैगाने ऊ यक निगाहे जा फिजाए सुबस बवद दरकारे मां गाहे सूफी गाहे जाहद गाह कलंदर में शवद रंग हाय मुख्तलिफ दारद बुते ऐ यारे मां। राजन में तू राजा कहिए पूमन में पूमा ठाकुर में ठकराई तेरी कौमन सिर कौमा पिता मेरो बड़ो धनी अगमा उस्तत कौन करी जे करते देख रहे बिस्मा। बस तेरी उस्तत असी इसलिए करते हां कि तेरे चरणा नाल साड़ी सांझ बन जावे साड़ी चोली ए दात पा दे के रस रस तेरे गुण गाउंदे रहिए।

पर रस्ता खाली दिखिया, कोई सुनिया लेके नहीं आया। ते अखां विच जल भर आया, अथरू किरण लग पे कि हाली भी कोई सुनिया नहीं आया।

लेखा रब मंगेसिया बैठा कड वही उथे तेरी वही कड्डी जाएगी तेरे लेखे जो तू लिखे हैं तू आप लिखे किसे होर ने नहीं लिखे इस वास्ते हुण मनुछा जीवन है नाम जप के सिमरन करके भजन करके अपने चंगे कर्म बना लै नहीं तां साहब गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं।

गौड़ी चेती, शब्द भी गौड़ी चेती श्री गुरु ग्रंथ साहब विच उसी राग विच ए शब्द उचारिया है भगत जी ने, ऊपर सिरे लेखे गौड़ी चेती भगत कबीर जी दा।

रो लिया। रो रो के मेरे तन गुरु नानक पातशाह ने चरणा रुत हो पातशाह बस अदूर कह लगे मरदाने बख्शीए। मरदाने ने कहा महाराज अगे मेनू पुछ के बख्श दो, ये तो बिरदा जो शरण आवे तो तंस लावे ए बिरद सारी सदा। तो हजूर ने अमे दृष्टि तकिया तो क्या करोड़िए फिर जप सतना संसार रोगी नाम करोड़िए नाम जपे नाम जपेगा तेरा मन पवित्र नाले बाणी पढ़िया नाले सत्संग भी करिया करते करोड़िए तेनू निरंकार ने माया दिती है दान पुण्य को जो माया भी कर सत्य हूं करोड़िया से गल च पला पा के कहता पातशाह एक बेनती मेरी करवा केड़ी पातशाह नाल ही मेरा पिंड हूं मेरे घर चल मैं थोड़ी सेवा थोड़ू प्रसाद छकाव दुध पिलाव। अदूर कह लगे क्यों मरदाने चलिए। मरदाने ने कहा महाराज भी कोई पूछने वाली गल ठाकुर जी चलो हूं तोड़ा सिख बन गया कौड़िया। अदूर कह लगे मरदानिया अजे सिख नहीं बने पातशाह किस तरह। हजूर कह लगे बरदाने अजय सिखी दिती। सिखी की है हुक्म ते जे हुक्म मनेगा तो फिर ही साडा सिख बन सिखी गल्ला विच नहीं गल्ला दी सिखी कमजोर। सिखी का स्वरूप की है उस वाहिगुरु का हुक्म। हुक्म मनिए होवे परवान ता खसमे का महल करोड़िए जो तेनू असी उपदेश दिता है उन्हों कमा जे तू कमाएगा फिर अरदास करें असी आवे तेरे तक प्रसाद ही छकेंगे। आके वाहिगुरु के नाम का पवित्र जो अमृत है ओदा प्रवाह और करोड़िए चरणा से कहते पातशाह मैं गरीब तेरी बख्शिश कर दिती है। हजूर कह लगे करोड़िया बख्शिश मेरे वाहिगुरु की जिस वेले बख्शिश का समा आता है फिर जिना संभाल लेता है वह पाए करोड़िए बख्शिश होगी तोडे उ भी गुरु की बख्शिश हो बख्शिश वाला समा मिले बख्शिश तो शरीर ही है। बाबा आनंद सिंह जी महाराज वचन करते सन उस वाहिगुरु की सदा ही मेहर है पर उस मेहर को संभाल लेना यह वही आप जिन्हों के भागा बख्श दो वे आके आप कीर्त नहीं जुड़े जिन्हों से गुरु जी कई आने ही नहीं कई नावे पाई जाते पर कई ऐसे प्रेमी भी हैं जिन्होंने किसी कीर्त च नागा नहीं पाया। जो कीर्तन च नागा नहीं पाएगा तो गुरु नानक की बख्शिश ही नागा नहीं पाएगा। कौड़िया ये मालक की दात ये जोर की चीज नहीं। न्यूयॉर्क तू टेलीफोन आया है कदों वापस आ रहे हो छेती आ जाओ किसी पासे उड़ीक है। तो कई गुरु प्यारे तुहाडे वर्गे माई भाई कीर्तन का अमृत पी तो यह दात गुरु की अपनी है। हजूर कह लगे मरदानिया रवाब चुकी ते शब्द ही अखीली तक पड़ी मरदानिया ने रवाब चुकया बाबे ने सोने गले सबका की किया और सारे पढ़िए कीर्तन की समाप्ति करिए।

वारी वंजा खनिए वंजा तौ साहिब के नामी ऐ परमेश्वर मैं तेरे तुवारी तेरे नाम तो कुर्बान जाना तन गुरु नानक साहब जी बयान करते हैं। आओ अपनिया बिरतियां उस पासे ले चलिए। गुरु नानक साहब के पिता मेहता कालू जी धन गुरु नानक साहब का राह पै तकते हैं। बेबे नानकी गुरु नानक साहब के वड्डे भैन जी आए अपने पिता मेहता कालू नूं मिले नाल बेबे नानकी दे पति भाई अजय राम भी आए। बेबे नानकी जी पिता मेहता कालू नूं मिल के अपनी माता माता तृप्ता नूं गले लग के मिले ते नूं गल नाल लगाया ता माता तृप्ता जी एकदम रोना निकल गया ते नाले कहन लगे जीए हुण ते बड़ा चिर हो गया नानक नूं देखिए तू आई है कुछ भरोसा होया मन नूं कि तेरा वीर मेरा सपुत्र गुरु नानक भी आवेगा। दूसरे पासे भाई अजय राव अपने सहुरा साहब मेहता कालू जी दे पैरां ते मत्था टेकिया। मेहता जी ने प्यार दिता ते भाई अजय राम जी भी पुछदे ने पिता जी गुरु नानक साहब हाली नहीं आए असी ते इस आस ते आए हां कि इस वरी जरूर महाराज के दर्शन होंगे। भाई अजय राम रिश्ते दे विच गुरु नानक साहब दे भाईया लगते ने जिन्हां नूं आपां जीजा भी कहने हैं पर वो रिश्तेदारी घट और गुरु नानक साहब दे सेवक ज्यादा ने। मेहता कालू जी कहन लगे जय राम तुसी आए हो मैनू भी भरोसा हो रहा है कि मेरा नानक जरूर आवेगा। कुछ समा बीते भाई मनसुख भाई भगीरथ गुरु नानक नाल प्यार करन वाले ए भी आए ता बेबे नानकी जी दे दर्शन कीते। इन्हां ने हाथ जोड़ के आखे है बेबे जी गुरु नानक साहब आए ने ता बेबे नानक जी कहन लगे हाली आए ते नहीं पर जद बसंत रुत ने आना होवे ठंडी हवा पहला चलन लग पैंदी बहार ने आना होवे कुंजां दियां डारां पहला उड्डन लग पैंदियां ने। जे गुरु नानक दे प्यारे आए ने ते गुरु नानक भी अज जरूर आवेगा। भाई अजय राव गुरु नानक साहब की याद विच जंगल वाल तुर पए एक दरखत दे थले बैठे बड़े वैराग दे विच गुरु नानक साहब का उचारिया होया ए शब्द गाण लग पए अमली अमल ना अंबड़ै मच्छी नीर ना होए जो रते सह अपने तिन भावे सब होए। ऐ पातशाह जिस तरह अमली अमल नाल प्यार करदा अमल तो बगैर वो जी नहीं सकदा मच्छी पानी तो बगैर नहीं जी सकती असि भी तेरे नाल इस तरह ही प्यार करने हैं तेरे बगैर असि भी जी नहीं सकते।

इधर माता तृप्ता जी अपने सपुत्र धन गुरु नानक साहब की याद विच मंजी ते लंबे पए। एक पासे मेहता कालू जी राह पे देखते और एक पासे भाई अजय राम जी और एक पासे रायपोए की तलवंडी का राजा राय बुलार और प्यारे उड़ीकते पए ने कि इस वरी जरूर गुरु नानक साहब की वरे गंढ गुरु नानक साहब की हजूरी विच मनावांगे। सूरज डुबण वाला हो गया है। मेहता कालू जी दरवाजे वाल निगाह टिका के बैठे हैं और बेबे नानकी जी छत ते खड़े होके राह पे थकदे ने। अचानक मेहता कालू जी खुशी नाल झूम उठे और आवाज मारदे ने, तृप्ता आओ देख मेरा नानक आ गया है। कहंदिया होया बुढ़ा बाबा कालू उठ के खड़े हो पर सचमुच सामने धन गुरु नानक साहब नाल सेवक मरदाना वेड़े विच दाखिल होए और आंदिया धन गुरु नानक साहब ने इस सद लाई सत करतार। इस सत करतार अंदर जिवें लह गया दिल की गहराई विच मेहता कालू जी खुशी नाल झूमदे होए अगे वधे। धन गुरु नानक साहब अपने पिता दे कोल आए गुरु होण दा मन विच गुमान ने अपने पिता दे पैरां ते मत्था टेकिया जिस गुरु नानक नूं दुनिया नमस्कारां करदी है ओ धन गुरु नानक साहब अपने पिता दे पैरां ते मत्था टेकदे ने ते पिता ने बाहां तों फड़ के अपने सपुत्र गुरु नानक साहब नूं गल दे नाल लाए कंड ते हाथ फेरे है अथरू नहीं रुकदे ते कहंदे ने बेटा अज मन नूं ठंड पै गई बड़ा समा हो गया तैनू उड़ीकदे हैं तैनू बड़ा मैं झिड़किया तैनू मैं एक बारी चपेड़ा भी मारी है पर बेटा बाद विच जाने है कि तू की है। अचानक ख्याल आया कहन लगे जा बेटा पहला अपनी मां नूं मिल। धन गुरु नानक साहब माता तृप्ता जी दे कोल आए मंजी ते कोल बैठे ते की देखते ने माता जी दी अखां बंद ने हाथां विच चोला है आपे कदे कहंदे ने बेटा नानक ऐ चोला पा लै आप ही फिर कह उठते ने लिया मां मैनू चोला पवा। ए वैराग देखिया ते धन गुरु नानक साहब अपनी माता दे हाथ फड़ के कहन लगे मां अखां खोल सचमुच मैं आ गया लिया मां मैनू चोला पवा। अखां खोलियां सपुत्र भी होवे फिर धन गुरु नानक साहब वर्ग घुट के छाती ना लाया अथरू किधे रुकन कहन लगे बेटा हर साल तेरे जन्मदिन ते चोला सी के रख दी है। ते साहब जी कहन लगे मां लिया फिर मैनू चोला पवा। पलो पली विच एक खबर सारे शहर विच फैल गई संगतां शहर दे वासी और वो प्यारे जिहड़े कीर्तन विच जुड़े सन दर्शन करन वास्ते उमड़ पए ते बेबे नानकी जी हाल भी छत ते खड़े सन कि पहला माता पिता मिल लैण

दुनिया विच जा रहे हैं, बंदगी कर, सिमरन कर और दुनिया नू स्वर्ग बना, सचखंड बना। ये कथा कहानियां सुननियां हैं, अपने महापुरुषों के जीवन वाल देखना है। वो पति भी ने, पुत्र भी ने, वो भरा भी ने, वो सज्जन मित्र भी ने, वो गुरु भी ने, वो पीर भी ने, उन्होंने दुनिया नू प्यार वंडिया। ते आओ ये कथा कहानियां सुन के असि भी अपने मन विच प्यार रखिए। साडे मन विच प्यार होवेगा, अपने घरदियां नू प्यार देंगे, लोकां नू प्यार देंगे, ते फिर स्वर्ग लभण दी लोड़ नहीं, ये दुनिया ही स्वर्ग बन जाएगी।

बाद इतने वचन कहे, भैन जी ऐ बेबे नानकी तुसी वड्डे हो, तुसी मेरे पैरां ते मत्था टेको, ए नहीं हो सकदा। साध संगत एक एक लफज विचों साडे जीवन वास्ते सिख्या है, ए वखरी गल है। इन्हां गल्लां नूं कोई मन्ने भावे ना मन्ने, पर सुख तां मनण विच ही है। हुण तां गुरु नानक साहब ने भाई मरदाने नूं कहा, मरदाने आ हुण तुसी जा के भाई अजय राम जी नूं लै के आओ। शहर वासियां नूं पता लग गया सी, दीपमाला उस वेले शुरू हो गई कि धन गुरु नानक साहब दा अज जन्म दिन मनाने दा सुभाग प्राप्त हो रहा है। पर कुछ देर बाद धन गुरु नानक साहब आप उठे, ता पिता मेहता कालू जी पुछदे ने, बेटा किथे चले? साहब जी कहन लगे, मरदाना भाई अजय राम नूं वैराग विच उठा नहीं सके। धन गुरु नानक साहब आप उस जगह पहुंचे जिथे भाई अजय राम जी वैराग विच बैठे शब्द गा रहे सन। अगे भाई मरदाना कोल बैठे शब्द पढ़ रहे और वार वार कह रहे सन, जय राम जी उठो। धन गुरु नानक साहब आ गए ने, पर भाई अजय राम जी वैराग विचों उठ ना सके, क्योंकि ए प्यार भागा नाल मिलदा है और इस प्यार नूं ओह ही जानदा है जिसने ये प्यार किया। भगत कबीर जी कहंदे ने, सो कत जाने पीर पराई, जाके अंतर दर्द ना पाई। भगत रविदास और भगत कबीर साहब दोनों दे शब्द पढ़िए, एको ही गल नजर आती। भगत रविदास वह भी मन की तड़प दसते ने और भगत कबीर साहब जी कहंदे ने, लागी होए सो जाने वीर, राम भगत अणियाले तीर। कि यह प्रेमा भगती दे तीर जड़े ने, जिन्हों लग जा, जिन्हों तीर लगते ने ओही जाने,

गुर अंग लिखी ते गुरारे गुर तीजी पीढ़ी विचारिया क्या हठ के नाम विचारे।

0: हमारी जेवा एक ब्रह्म हर के गुण अगम अथाह हम क्यों कर चले आना
1: हर तुम बड़ अगम अथाह।

0: करसम बेनती कृपा करसम
1: बेनती शरण बेनती बेनती हर कृपा करसम बेनती
2: निजारी रे रे निजारी रे रे।

हर गुण गावे सहज सुभाए, प्यू दादे का खोल डिठा खजाना, ता मेरा मन पया निधाना। प्यू दादे का खोल डिठा खजाना, ता मेरा मन पया निधाना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मानयोग साध संगत जीओ, साहिब श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज दा पावन बचन साडे सन्मुख है। गुरदेव जी ने अपने इस बचन राही साडे नाल मिल के ते ए गल प्रगट कीती है कि भाई दुनिया दे अंदर संसार विच होर भी कीमती चीजा हन जो मनुख दे जीवन दी उसारी कर दिया ने, पर मनुख दा आचार, मनुख दा आत्मक जीवन ओ जिस धन नाल उसरदा है, ओ धन वाहिगुरु

गुरु नानक दे दर दी सेवा कितनी महान है। इंद्रपुरी लख राज लखां वेरा इंद्र दी पदवी प्राप्त करके जितनियां खुशियां प्राप्त होंदियां हन उतनी गुरु के सिख नूं गुरु घर दा पानी ढो के दातां प्राप्त हो जांदियां हन। इंद्रपुरी लख राज

कितनी बख्शिश है। गुरु के सिखां ते जो गुरु नानक दे दर दा पानी ढो के गुरु के सिखां नूं इशनान कराउंदे हन। भाई साहब गुरदास जी कह रहे हैं ऐसे गुरसिखां नूं पंज वार गंगा दी यात्रा कोई कर लवे, पंज वेरा पराग राग जाके इशनान करे, उस थां दी यात्रा करके आवे, इतना पुन है एक गुरु सिख नूं इशनान कराउण दा। उचारण करो श्री वाहिगुरु।

दशमेध जग फल सिख को जीवाएगा। एक बेर हां प्यार दे नाल गुरु के सिख नूं पानी पिला देना, बड़े प्यार दे नाल प्रसाद छका देना। हजूर कहंदे हन उस गुरसिख दा अशमेध जग हो गया। समझो जिसने एक नूं प्रसादा छका देता है।

महापुरुष जिना दे दर्शन करके चित आवे श्री वाहे गुरु। ऐसे महापुरखां दे वी वेरां दर्शन कर लिए, एडा फल है किसे गुरु के सिख नूं मुट्ठी चापी करके पाव। ओ थकिया होया उदे चरण दबा के उसनू सुख दी नींदर समा देना। मेरा भाव ए कहण तो नहीं के गुरु का सिख अमृत वेले सुता होया, नहीं, अमृत वेले तां उसने उठना ही है, पर ए पूर्णे जो भाई साहब भाई गुरदास जी ने पा के दसे हन, ए साडे लई एक रस्ता है, ए साडे लई एक रोशन मुनारा रस्ता है जिदे उपर चल के असी अपना जीवन सफल कर सकते हैं। भाई साहब भाई गुरदास जी ने ही नहीं लिखिया, गुरु अर्जन देव पातशाह ने भी ए पूर्णे पा के सानू आप दसे, आप करके विखाया। उच्चारण करो श्री वाहे गुरु। जदों पिशावर तो संगत आई हजूर दे दीदार नू, ता श्री अमृतसर संगतां पहुंचियां ते तकरीबन तीन कु मील हरिमंदर साहब दी विथ ते छामा पै गईयां। हजूर दा हुक्म होया वही रात एथे टिक जाओ ते सवेरे गुरु दरबार विच आउना। एथे अज वी गुरुद्वारा पिपली साहब जो सतगुरां दा पवित्र स्थान है, जदों संगता रात ठहरियां आके गुरु अर्जन देव पातशाह ने आप आके जल पानी दी सेवा कीती, संगतां दी मुट्ठी चापी कीती, उपरांत फिर अमृत वेले संगतां नूं इशनान कराया, कोई पछाण नहीं सकिया, क्योंकि जिस नूं तू जनाहे सोई जन जाने, जिसनू ओ आप जनावे ओही जान सकदा है। पर गुरु अर्जन देव पातशाह ने सानू पूरने पा के दस दिते भई सेवा ही सारियां दातां दा मूल है, जिन सेवया तिन पाया मान। जिसने भी कोई दात प्राप्त कीती है सेवा करके ही कीती है, जे जिन्हां ने सेवा कीती ओ गुरु नानक दे घर दे मालिक बन बैठे। सेवा कीती गुरु अमरदास पातशाह ने, सेवा कीती गुरु रामदास पातशाह ने, सेवा कीती गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने, गुरु नानक दे घर दे मालिक बन गए, गुरु नानक दा रूप हो गए। सो सेवा ही एक ऐसी दात है जो मनुख नूं दरगाह दे विच पहुंचाउंदी है। विच दुनिया सेव कमाइए ता दरगे बैसन पाइए। हजूर कहंदे ने तू अपना लोक परलोक सुवारना चाहुंदा है ता फिर सेवा कर। विच दुनिया सेव